0: मत जोड़िए मुझसे रिश्ता, मेरे बारे में तुम कुछ नहीं जानते।
1: पुरानी जानकारियां तो कंपनियों को चाहिए होती हैं, मोहब्बत अपनी नई दास्तान लिखती है।